0: सुन को भी आरे दान करता थी
1: देख ला कुमार लंगे आंटी का पंबेर गरी आंटी लो कुमार जंगे आज रे कुमार लंगे तन ना परोंट डांजे ना।